0: वात्सल्य बुटवल क्लिनिक सुखनगर बुटवल सम्पर्क 9803364060।
1: यति बेला दिउँसोको

नमस्कार। रेडियो लुम्बिनी साँझ 7 बजे हाल खबर में दिवाकर पंथी को स्वागत छ। यो हाल खबर एफएम 96.8 मेगाहर्ज, अनलाइन www.radiolumbini.org, विभिन्न मोबाइल एप्लिकेशन र रेडियो लुम्बिनी को फेसबुक पेज बाट प्रत्यक्ष सुन्न सकिन्छ। हाल खबर को शुरू में मुख्य खबर शीर्षक। जलवायु परिवर्तन को असर का विषय में श्रमिक राष्ट्र संघ में तथ्य सहित प्रस्तुत हुन प्रधानमंत्री कांग्रेस सभापति को सुझाव, सचिवालय को मात्र भर नपरी विषय विज्ञसँग छलफल गर्न आग्रह। बाढ़ी प्रभावित क्षेत्र में राहत तथा पुनर्स्थापना का काम तीव्र, सरकारी संयंत्र संगे 30 गैर सरकारी संस्था सक्रिय। कृष्णवीर में खोलिएको ट्रैकलाई फराकिलो बनाइदै भदौ मसान्तसम्म गाड़ी सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य। हालसम्म भोटेकोशी बाढ़ीमा परेका मध्ये 1341 शव भेटिए, 4996 जना अझै सम्पर्कविहीन। राष्ट्रीय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रममा एक दशकमा 39.58 अर्ब लगानी, 18 लाख परिवार लाभान्वित। जंगलमा खोजिँदै रसुवागढी हाइड्रोका सम्पर्कविहीनहरू, रक क्लाइम्बर टोली परिचालन। पाल्पामा 2 महिनामा 231 जनामा डेंगी संक्रमण पुष्टि, कपिलवस्तुको बुद्धभूमिमा थप 730 जग्गा धनीहरूले पाए लाल पूर्जा। श्रीकृष्ण गण्डकी सहकारीको 7 वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न, देवदह साझेदारी वनद्वारा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा 1,21,000 सहयोग गर्ने निर्णय। र लगातार तेस्रो जीत निकाल्दै नेपाल एसीसी प्रीमियर कपको सेमी फाइनलमा।

0: सक्छ।
1: सतर्कता अपनाउने गरौ, सुरक्षित बनौ।
2: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
3: डेंगू से बचे की खंती मच्छर के काटे से बचब ही सर्वोत्तम उपाय हुए। पूरा शरीर ढके वाला कपड़ा पहना जाए। सूते के समय मच्छर से बचे खंती मच्छरदानी के प्रयोग करा जाए। घर के आसपास और खेत बाड़ी में काम करे के समय मच्छर के काटे से बचा जाए। झाल और दरवाजा में जाली लगाई के बंद करा जाए। मच्छर उत्पन्न न हुए देख लिए घर के आसपास सफा रखा जाए और पानी जमे के न देवा जाए। अचानक बुखार और ज्यादा सरदर्द भय में तुरंत नजीक के स्वास्थ्य संस्था या अस्पताल में जचावा जाए।
4: अनुरोध आग लुम्बिनी प्रदेश सरकार गृह मंत्रालय राप्ती उपत्यका देवखुरी नेपाल।